0: उसे खरीदना चाहता हूँ,
1: मगर मैं उसे बेचना नहीं चाहता।
0: सोच लीजिए मुंह मांगी कीमत दूंगा।
1: मैं फिर भी तैयार नहीं।
0: मैं उसे खरीदना चाहता हूँ,
1: मगर मैं उसे बेचना नहीं चाहता।
0: सोच लीजिए मुंह मांगी कीमत दूंगा।
1: मैं फिर भी तैयार नहीं।
0: मैं उसे खरीदना चाहता हूँ,
1: मगर मैं उसे बेचना नहीं चाहता।
0: सोच लीजिए मुंह मांगी कीमत दूंगा।
1: मैं फिर भी तैयार नहीं।
0: मैं उसे खरीदना चाहता हूँ,
1: मगर मैं उसे बेचना नहीं चाहता।
0: सोच लीजिए मुंह मांगी कीमत दूंगा।
1: मैं फिर भी